मिलै त्रिपता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सत गुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सत गुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजमा काहे रे मन चित वह उद्दम

तिस पाछै बचरे छरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मैं सिमरन करिया। सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइया तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सौ पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सौ पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा। सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सि

ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा।

की शरणा जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजमा पई प्राप्त मनुख दे हुरिया। गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै नकाम मिल साध संगत पज केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरण कै जना।

तारा सेवक सिख सभय कर तारा मोर अच्छा निज कर दय करिय सब बैरन को आ संघर्य।

त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जू करो रक्षा। राख ले हो मुह रखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे।

काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो

सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना, घट घट के पट पट की जाना। जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा। जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन शिष्ट सब तार, आप अपनी भूज उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ।

सकल मले चकर ओरण काता जे अस्तु तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित होए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट न है रक्षा होए तह सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई

प्रीतम मनाओ किसन बिसन कबहु न त्याओ कान सुने पहचान न तिन सो लिव लागी मोरी पग इन सो महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाहे गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन।

निवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परामय आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दय हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संघारो प्रथम तरो भगवत को त्याना बहुर करो कविता भिधनाना कृष्ण जथा मच्चरित्र उचारो चूक होए कब ले हो सुधारो कवियो बाच दोहरा जो निज प्रभ को सो कहा सो कहे ओ जग माह जो ते

दोहरा ठाड़ पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत। दोहरा काल पुरख की देमो कोटक विष्ण महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रवसस क्रोर जलेश। दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत सुर्ग बास।

दुख पाप ते निकट न आवै, बिसनु भगत की ए फल होई, आद ब्याद छै सकै न कोई। संवत 1755 हाड़ बदी प्रथम

मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जान्यो सिरियस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, गुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अबरा साध संजोग विजोग दुए कार चलाव है लेखे आव है भाग आदेश तिसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुगे को वेश एक माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दी बाण जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओहो वेखै उन्हां नदर नावै

ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਭੇਖੀ ਆ ਭਰਮੀ ਆ ਭੋਗੀ ਆ ਭੁਗਤੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਸਵਰਨ ਕਰਮ ਜੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੇ ਸੋ ਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹਨ ਨਮੋ ਭੂ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਇਸਨਾਨ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ ਨਮੋ ਇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟੇ ਨਮੋ ਤੰਤਰ ਤੰਤਰੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਅਨੂਪੇ ਅਰੂਪੇ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬ੍ਰਿਧ ਕਰਤਾ ਦੋਰਦ ਅਰਦੰ ਅਗੰ ਓਗ ਹਰਤਾ ਪਰਮ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰੋਛ ਪਾਲੰ ਸਦਾ ਸਰਬਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾਤਾ ਦਿਆਲੰ ਛੇਦੀ ਅਭੇਦੀ ਅਨਾਮੰ ਅਕਾਮੰ ਸਮਸਤੋ ਪ੍ਰਾਜੀ ਸਮਸਤਸਤ ਧਾਮੰ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਜਲੇ ਹੈ ਥਲੇ ਹੈ ਭੀਤ ਹੈ ਭੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜੂ ਹੈ ਦੇਸ ਹੈ ਭੇਸ ਹੈ ਪੋ ਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਅਗਾਧੇ ਅਬਾਧੇ ਆਨੰਦੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਨਿਰਨਾਥੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬਦੇਸੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੇਸੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਸਾਜ ਸਾਜੇ ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹੇ ਨਮੋ ਮਾਹ ਮਾਹੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤੇ ਨਮੋ ਰੋਖ ਰੋਖੇ ਨਮੋ ਸੋਖ ਸੋਖੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੀਤੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੀਤੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਿਆਨੰ ਨਮੋ ਪਰਮਤਾਨੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮੰਤਰੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੰਤਰੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਅਨੰਗੇ ਨਮੋ ਜੀਵ ਜੀਵੰ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਅਖਿਜੇ ਅਭਿਜੇ ਸਮਸਤੰ ਪਰਸਿਜੇ ਕਿਰਪਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸਦਾ ਸਰਬਦਾ ਰਿਧ ਸਿੱਧੰ ਨਿਵਾਸੀ ਚਰ ਪ੍ਰਛੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰਮੇ ਅਖਲ ਜੋਗੇ ਅਚਲ ਭੋਗੇ ਅਚਲ ਰਾਜੇ ਅਟਲ ਸਾਜੇ ਅਖਲ ਧਰਮੰ ਲਖ ਕਰਮੰ ਸਰਬੰ ਦਾਤਾ ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਭਾਨੇ ਸਰਬੰ ਮਾਨੇ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਤ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਭੁਗਤਾ ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ ਸਰਬੰ ਦੇਵੰ ਸਰਬੰ ਭੇਵੰ ਸਰਬੰ ਕਾਲੇ ਸਰਬੰ ਪਾਲੇ ਰੂਆਲ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਰੂਪ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਜੋਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬਮਾਨ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਦੇਵ ਭੇਵਾਦ ਉਦਾਰ ਸਰਬ ਪਾਲਕ ਸਰਬ ਕਾਲਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪੁਨ ਕਾਲ ਜਤਰ ਤਤਰ ਬਿਰਾਜਹੀ ਅਵਧੂਤ ਰੂਪ ਰਸਾਲ ਨਾਮ ਠਾਮ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾ ਕਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਰੇਖ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਉਦਾਰ ਮੂਰਤ ਅਜੋਨ ਆਦਿ ਅਸੇਖ ਦੇ ਸੌਰ ਨ ਭੇਸ ਜਾ ਕਰ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਾ ਰਾਗ ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ ਨਾਮ ਕਾਮ ਬਿਹੀਨ ਪੇਖ ਧਾਮ ਹੂੰ ਨਹਿ ਜਾਹਿ ਸਰਬ ਮਾਨ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨ ਸਦੈਵ ਮਾਨ ਤਤਾ ਹੇਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲ ਅਨੰਤ ਕੋ ਫਿਰੇਕ ਦੇਵ ਭੇਵ ਨਾ ਜਾਨਹੀ ਜੇਹੇ ਬੇਦ ਔਰ ਕਤੇਬ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੋ ਜਾਨਈ ਕਿਹੇ ਜੇਬ ਤਾਤ ਮਾਤ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾ ਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਿਹੀਨ ਚੱਕਰ ਬੱਕਰ ਫਿਰੈ ਚਤਰ ਚੱਕ ਮਾਨਈ ਪੁਰਤੀਨ ਲੋਕ ਚੌਦਹ ਕੇ ਬਿਖੈ ਜਗ ਜਾਪ ਹੀ ਜੇਹ ਜਾਪ ਆਦ ਦੇਵ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਥਾਪਿਓ ਸਭੈ ਜੇਹ ਥਾਪ ਪਰਮ ਰੂਪ ਨੀਤ ਮੂਰਤ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬ ਬਿਸਵ ਰਚਿਓ ਸੰਯਮ ਭਵ ਗੜਨ ਭੰਜਨ ਹਾਰ ਕਾਲਹੀਨ ਕਲਾ ਸੰਯੁਗਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਦੇਸ ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੋ ਭਰਮ ਰਹਿਤ ਭੂਤ ਅਲਖ ਭੇਸ ਅੰਗ ਰਾਗ ਨਾ ਰੰਗ ਜਾਕ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਨਾਮ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਭੰਜਨ ਮੁਕਤ ਦਾਇਕ ਕਾਮ ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀਕ ਅਨ ਉਸਤਤ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਵਧੂਤ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਆਦਿ ਰੂਪ ਅਸੂਤ ਅੰਗਹੀਨ ਭੰਗ ਅਨਾਤਮ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਕਾਇਕ ਸਰਬ ਕੋਪਰਤ ਪਾਰ ਸਰਬਗੰਤਾ ਸਰਬਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੇਖ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਨ ਜਾਨਹੀ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਰ ਰੇਖ ਪਰਮ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾਕ ਹੈ ਨੇਤ ਭਗਤ ਨਿਤ ਕੋਟ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਨਾਵਹੀ ਬਹੁ ਚਿਤ ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣ ਗਨ ਉਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰਾ ਸੁਨਾ ਭੰਗ ਉਪਮਾਨ ਅੰਗਨ ਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਸ਼ਦਿਨ ਅਨਾਸ ਆ ਜਾਨ ਬਾਹ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹ
राजान राज पान आन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंग कालान कालन भूतांगा बापंगत मित पार गुणगन उदार मन गण प्रणाम निरपय निकाम आत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिश कर्मा दृश्य धर्म सर्वा प्रणाड दंड बड चाचरी छंद प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे पारे हरियं करियं निरनामे अकामे पोजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद ना सत्रा ना मित्रा ना परमंग ना पित्रा ना कर्मंग ना काये अजन्मंग अजाय ना चित्रा ना मित्रा प्रे है पवित्रा पृथ्वीस दिश दृश कृश भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आछज देश के आभिज पेश के आगंज कर्म के आभंज परम के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्णा है के विभूत करना है के राजम प्रभा है के धर्मम तुजा है के अशोक वर्णा है के सर्वा भरना है के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद देव है के आप भेव है के चित्रं विहीन है के कदीन है के रोजी रजा कै रही मै रिहा कै के पाक बेअब हैं के गैबुल गैब हैं के अफवुल गुनाह हैं के साहन साह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहांद हैं के राज करीम हैं के कर्मं करीम हैं के सर्वंग कली हैं के सर्वंग दली हैं के सर्वत्र मान्या के सर्वत्र दान्या के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पाना के सर्वत्र माना के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं कलीमा के परमं फीमा के आकल अलामा के साहिब कलामा के हुसनुल वजू हैं तमामुल रुजू हैं हमेशल सलामा सलीखत मुदामा गनीमुल सकस्ता गरीबुल प्रस्ता बिलंदल मकाना जमीनुल जमाना तमीजुल तमामा रुजुअल निदाना हरीफुल जीमा रजायक यकीना अनेकुल तरंग हैं भेद हैं भंग हैं जीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त बेपूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सोजुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं भेदी अनूप हैं समस्तो प्राज हैं समस्त सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल काम हैं निर्बाध स्वरूप हैं गाध हैं नूप हैं ओ अंग आद रूप नाद स्वरूप नंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिबरगं त्रिबादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व भागे सुसर्वानुरागे त्रिभुगत स्वरूप हैं अछेज हैं छूत हैं के नरकं प्रणास हैं पृथ्वीउल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं बेभुगत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं निरुक्त सदा हैं बेभुगत प्रभा हैं अनुकुत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं चाचरी छंद
अभंग है नंग है भेख है लेख है भरम है कर्म है नाद है जुगाद है जय है बह है भूत है तूत है अनास है उदास है तंद है बंद है भगत है विरक्त है नास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है लिख है दिख है अलेख है पेख है टाह है गाह है संभ है गंभ है नील है नाद है अनित है सुनित है जात है जाद है चत्र छंद त्वप्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वप्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे नंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रा न पुत्रा न सुत्रा न मित्रा न ताता न माता न जाता न पाता निरसाकं शरीक है मितो मीक है सदैवं प्रभा है जय है जा है भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है मेसुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी देहांद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरी फुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं प्रणास हैं बहस्तुल निवास हैं के सर्भुल गवन हैं मेसुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परम परमीस हैं समस्तुल अदीस हैं अदेसुल लेख हैं हमेसुल पेख हैं जमीनुल जमा हैं मीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं के जुरत जमाल हैं के अचलं प्रकाश हैं के मितो सुबास हैं के अजब स्वरूप हैं के मितो विभूत हैं के मितो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलं अनंग हैं के मितो अपंग हैं मद पार छंद त्व प्रसाद मन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अर बरागंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड बर नर मंडन पभनास मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम आन छेजांग आसना भंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास्त्रित तर तुरास आ जान बाहो एक सदा ओ अंकाराद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबरा काल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अन छिजगात आज जना बात अन झंझगात अनरंज बात अन टुट भंडार अन ठटा पार आडीठ धर्म अत ठीठ कर मान ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणाला है अरकाला है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोबारण है तृत के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वंकर है सर्व पास्या है सर्वनाश्या है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं खलखंडस हैं परते पर हैं करुणा कर हैं अजपा जप हैं थपा थप हैं कृता कृत हैं मृता मृत हैं मृता मृत हैं करुणा कृत हैं कृता कृत हैं तरणी तृत हैं अमतेश्वर हैं परमेश्वर हैं कृता कृत हैं मृता मृत हैं अजबा कृत हैं मृता मृत हैं निर्नायक हैं खलकायक हैं विश्वम पर हैं करुणालय हैं निरपनायक हैं सर्वपायक हैं पवपंजन हैं रगंजन हैं रिपतापन हैं जपजापन हैं अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ता कर हैं हर्ता हर हैं परमात्म हैं सर्वात्म हैं आत्मवास हैं जस के जस हैं पोजंग प्रयात छंद
ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ, ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ, ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ, ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ, ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਸੰਗ ਤਾਮ ਸੰਗ ਸਾਂਤ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਤੰਗ ਤਤੰਗ ਸਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ, ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ, ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ, ਨਮੋ ਜੁੱਧ ਜੁੱਧੇ, ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ, ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ, ਨਮੋ ਕਲਹਿ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਾਂਤ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ, ਨਾਦੰ ਬੇਭੂਤੇ, ਕਲੰਕਾਰ ਅਲੰ ਰੂਪੇ, ਅਲੰਕਾਰ ਅਲੰਕੇ, ਨਮੋ ਆਸ ਆਸੇ, ਨਮੋ ਬਾਂਕ ਬਾਂਕੇ, ਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਕਾਮੇ, ਏਕ ਅਛਰੀ ਛੰਦ ਅਜੈ ਅਲ ਅਭ ਅਭ ਭੂ ਅਜੂ ਅਨਾਸ ਅਕਾਸ ਗੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਭਖ ਕਾਲ ਦਿਆਲ ਲੇਖ ਭੇਖ ਅਨਾਮ ਕਾਮ ਗਾਹ ਟਾਹ ਨਾਥੇ ਪਰਮਾਥੇ ਅਜੋਨੀ ਅਮੋਨੀ ਨ ਰਾਗੇ ਨ ਰੰਗੇ ਨ ਰੂਪੇ ਨ ਰੇਖੇ ਅਕਰਮੰ ਅਪਰਮੰ ਅਗੰਜੇ ਅਲੇਖੇ ਪੋਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਅਗੰਜੁਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੇ ਨਿਰਕਾਮਿੰ ਬੇਭੂਤੇ ਸਮਸਤੁਲ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸੁਧਰਮੰ ਬੇਭੂਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚਦਾਨੰਦ ਸਤਰੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਕਰੀ ਮੁਲਕ ਨਿੰਦਾ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਾਇਬ ਬੇਭੂਤੇ ਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ ਹਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ਕਰੀ ਮੁਲ ਰਹੀਮੇ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੁਨਿਆਮ ਭਾਵ ਸੁਭੰ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ

उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बात बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दा रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सब मुकाव हो। आप हाथ दा मोहे बचाव हो, सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करी। सब बैरन कौ आज संगरी, पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याहू। जो बर चाहो सो तुम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारी है। चुन चुन सतर हमारे मारी है।

दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सगल का

मानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पैबा आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तोहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए चम भव जुगा स्वरूप सुयम भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठपत उत्पाता सकल मलेच करो रण काता जे अस तुहज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुह मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट भटारे जो कल को एक बार त्या है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट टरैं तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाह छुह सकै न कोई एक बार जन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोखते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दैले हो बारी सर्ब ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोखते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छह करता श्री अस तुज जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांच फल पावै सोई दुख न तुसै व्यापत कोई अड़िला सुना गुंग जो याहे सो रसना पावई सुना मूड़ चितलाए चतुरता वई दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहै हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई संबत सत्रह सहस पणिजर्द सहस पंतीन कहिजै भाद्रव सुदी अष्टमी रविवार तीर सतद्रव

रावा चाटा पै वेख लोग हस कर जाए रोटियां कारण पूरे ताले आप क्षण धरती नाल गावन गोपी गावन कण गावन सीता राजा राम निरपुर निरंकार सतनाम जाकर किया सब जहान सेव सेव कर्म चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ सिखे सिखा गुर विचार नदर कर्म लंघाए पार कोल्लू चरखा चक्की चक थाल बारो ले बहुत अनंत

एक हुंदा खाए चलाया था उतना भिकाई का, जल था जिया प्रिया लोवा आकार आया कार। ओ जे आखिस तुम हजाने तिना भी तेरी सार, नानक भगतां भुख सलाम।

जुग जुग फिर वटाइए ज्ञानी बुझता है। साजगुरा संतों का धर्म ग्रथ वाओ, त्रे तेरे जतै का जोर ग्रथ वाओ, द्वापर अध पै का सत ग्रथ वाओ।

से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। तेरे कर बैसो हो हर जन प्यारे, सत गुर तुमरे काज सवा।

ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा, मन अपन है सब ते नीचा।

कुछ दा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए अध्याकर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मैत कौन बखाना है ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाना है ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सदजीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी।

मंगले अष्टपदी जिसके अंतरराज मानो सुनरपति होवत स्वानो जो जन्म जो बनवंत सो होवत विष्टाकार जंत आपसको कर्मवंत कहावे जन्मरा भोजन प्रमावे तन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्ख अंध अज्ञान कर कृपा जिसका हिरदा गरीबी बसावै नानक इं मुक्ता के सुख पावै धनवंता हुए कर गिरवावै तरण समान कर संग न जावै बहु लश्कर मानख पर कर आस पल पितर ताका हुए विनाश सबते आप जान बलवंत किनम होए जाए पसमंत किसान बद आप अंकारी धर्म राय तस्कर कुवारी गुर प्रसाद जाका मिटाए अमान सो जन नानक दरगह प्रवान कोट कर्म कराए हों तारे श्रम पावे सगले विस्थारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर करे अवतार अनक यत्न कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह को कैसे गवै आपस कहो जो भला कहा वैत से भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मन होए कव नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कस होए तब इसको उसको ना ही कोई जब यह जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जौन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देस जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटाए गुर प्रसाद नानक हो छूटाए सहस खटे लख कोट तावै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अन भोग के अंके कराई नह तृपथावै खप नह तृपथावै खप कमरै बिना संतोख नहीं को राजाय सुपन मनोरथ मृत्य सब का जाय नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए करण करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावण करणै हार उसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप रसोए जो किनो अपसो अपना रंग सब ते दूर सब का संग